सब ते पूजता की शोभा बनी नानक हे गुरु नाम सुख मनी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद उतार का से दस्खत का पातशाही दसवीं अकाल पुरख की रचावने सर्व लोक दी रचावने सर्वकाल जी दी रचावने सर्व लोक जी दी सदा रचावने बणतन मही जल तल महा जय तय प्रसु प्रणान दान जागमग तेज पूर्ण प्रताप अमर जबिन जय जपत जाप सातो का सात पकार बितरियो अदृष्ट जय करम जार सातो का सात पकार बितरियो अदृष्ट जय करम जार ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਕਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਣ ਚੜੇ।

पौड़ी बड़ी उड़ा बार तेरा मर्तबार प्रंगण के जापन करतबा जी अंदर जी सब की जान ला सब की तेरे बस तेरा करबला तेरा कर अनंत बधाई तुझ कर माल माता ते जे अपना विचार सर्व कला भरपूर दी सजित कता नानक दास अंदाज जागे बिनवंता श्लोक कौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस रात दुई दाई दया के लै सकल जगत चंगियाईया मुरियाईया वाच धर्म दूर।

जह सिमरत गन काशी उधरी। जह सिमरत जिनू सिमर के गणका उधर गई, अजामल ने गत पा ली। जह सिमरत अजामल उधरियो गणका हूं गत पाई। जिनू सिमर के अजामल दे दुख दूर हो गए, गणका ने गत प्राप्त कर ली। महाराज कहते ऐसा नाम जिहड़ा है इह सदा सुखां दा दाता है। जिवें आप जी नाल पहला बचन सांझा कीता सतगुरां दा, सतगुर साहब का की बचन है, जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राजन। सारे सुख गुरु दे नाम विच ने, गुरु दी बाणी विच ने। हजूर साहब अवचल नगर सचखंड साहब दर्शन कर रहे गुरु प्यारियो, गुरु कोले अरदास करियो, मेल लहो दयाल साहब। कहिंदे विण तुद होर जे मंगणा, सिर दुखां कै दुख देहो नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। मन की भुख सतगुर की बाणी नाल उतरनी है, सतगुर दे नाम नाल उतरनी है। नाम बाणी दे नाल जुड़ के मनुख की भुख नहीं, ते नाम तो बिना आतर होया मनुख जिहड़ा है ये भजिया फिरदा है, दौड़िया फिरदा है, पर एदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। एदे पल्ले केवल फोकट, केवल सुआह पैंदी है, जो अगे सतगुरु जी सानू बख्शिश करनगे। सो साहिब कहिंदे

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गद हा विभूत दारि गिद्वा मसान बास करे उई करत है खूक मड बास लग डोलत उदा सिमरिक तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सदैया ताहे हिज की बडैया देत बंदरा सदीव पाए नंगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध मैं प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चारी छित छाना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के फसैय धन लोभ के तजैया ते तगौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उडैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे ऐसा न प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है फल के बसैया ताहे बांधरी के जैया कहे आदिश फिरैया ते तो भूत के बछानी है जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के बछैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धीन चारी लिखे के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद बावे पूजत न ताहे जाके राख रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैदी साल सदा व्रतपाल जम चारते रहत है जोगी जटाधारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे हुई करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस्त तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद जारी सन्नत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल हांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिर आई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अरबि संकेत वेद और पुराण के सिमृत समूहन के होए हुए बितय है। मोन दी मतार कते अश्विनी कुमार कते अंशावतार कते काल बस भय है। पीरे और पिकांबर कते गाने न परत एत भूमि हित होय के फिर भूमि ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान बुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सरद्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे कर अनेक तो चीक पट वेश भोस दी अनेकता निभावत है। शीस को कह भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोतनो दंडो दया डांग अत तीस को कहा भयो रुकी जो पे डार रहे उर्थ मुख मन तेना मुंड निहो रायो आद ईश को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भावे जगदीश को शीस पटकत जाके कान में खजूरा दस मुंड छटकत मित्र बुद्ध हूँ के शोक सौ आग को चरैया फूल फूल को भचैया सदा वन को भ्रमैया और दूसरो न भोग सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीश वृक्षर सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेड पर लोक सौ नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाऊ भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी गहूँ जो किया बराके बने का बहू सन्यास भेष बन क्या दिखावई गहूँ पौन हारी गहूँ बैठ लाए तारी गहूँ लोभ की खुमारी सौ अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ टंड धारी होके लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाजन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर अगत अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक थार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के गीत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश मछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बास की भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जो की भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो करता करीम सुविराज करहीम उई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान वो एक ही किसेव सब ही कगुर देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहुरा मसीद सोई पूजा निवाज उई मान सब एक बयान एक भ्रमाव है। देवता देव जा गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है।

आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वछ होए सब पच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे पच, के तक प्रत्यच होए पचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। तेज जीव तेज में अतेज, जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कूकत फिरत केते रोवत मरत, केते जल में डुबत केते आग में जरत है। केते गंग वासी केते मदीना मकानी वासी, के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत केते भूम में गड़त, केते सुआ पे चढ़त केते दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त केते जल में रहत, केते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दान बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घस हारे, चंदन लगाए हरे, चोचार बोझ हारे, पाहन चढ़ाए हरे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हरे, मड़ी मंडली हारे, भीतन लगाए हरे, छापसी गाय हरे, गंधर्व बजाए हरे, किन्नर सब पच हरे, पंडित तपंत।

मंगना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग लेखंग फेखंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन फेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कह मैं ना वे न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं गद्वैखंग वैखंग जूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे यं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मेटे बनाए अकादे अभयाद अद्वय अविनाशी परे यं परा

ननेहं नगेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न जाते न बाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेहं न लोभं न चोभंग भूतंग फेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदं भेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भ्रमं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भ्रमं सदेवं सदा सिद्ध।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दोखं कहूँ औखधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सादकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ वीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा मच्छरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं

जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्राद नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतपान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत गाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोग गाव कथत कतेब कई अगन होत्र कई पौन हार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आदि करम कहूँ अगन होत्र कहूँ

कई तीरथ तीरथ भरम सो भ्रम कई अगन होत्र कई देव करम कई गर्द वीर विद्या विचार नहीं तदपता सबायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्रथ उचरत सो करम न्यवली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जो करीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लठकंत जाप कई जपत जो कल ब्रह्म प्रजंत नहीं तदव दास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदव दिष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटो सर्व धर्मा विहीन त्वा प्रसाद तोटक छंद जय जम पहु जुगण जूह जुअंग भय कम पहु मेर पयाल भुअंग तप तापत सर्व जलेर धरंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखे

सोख सुखं जे रोग न सोख न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्रि छत्र चितं जे राग न रेख न रोग बणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव बताप प्रचंड लियो श्रे सिंध रूपिंद नगेंद नगं श्रे जच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव वेव नरंग नर पान रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत ज्योत भुजंग किए देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभ जात न बात न ज्योत चुतंग जे तात न मात न भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जंपह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथादिक पांद गणंग भवभूत भवेख भवान तुअंग जेह अंडज सेतज जे रजंग रच भूम आकाश पताल जलंग रच पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवास तंग रज रोज

विनाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है नरोग राग रेग है अधोग ताग तक है अभूत ब्रह्म भेक है। न तात्मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अधेग सेग भेक है सदीव विश्व भरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विश्वेक विश्व भरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम परम है। अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्पठोर मैं विशेख।

चित्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीब है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साध है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न काम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैद है, न नर को स्वरूप है, न चल है, न चित्र है, न चित्र

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेद है बलिया रूप राग रंग है न द्वैग है न भेद है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चुद्रचिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम।

है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है।

नराधपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति बनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपि पिसेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पिखिये अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र।

सनक औसन केस नंदन पाव ही नहासेव जाछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्र ओमुख चार सर्व सबत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाथ मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहयो विराज धिराज राज प्रवीन जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैश्य लंके बिखे विराजे

हर हार्थ के सब नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछरा पार, सोध सोध थके महासुर।

गुंगुरु गमंगण सद्रज मंगण फणियन फुंकारण धरम दुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सी मैखासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मन बंदन दुष्ट निकंदन वृष विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाये पताल आकाशन ले संकटी निवारण धम धारण तेज प्रकरखण धुंद तपे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी सहस्त्र प्रकरखण आद नील अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आदा तंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन शंभु चक्रतन शंभ मथे बारज बिलोजन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना

घंट का बिराजे रुण ढुण बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग बाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंत्र रिझे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय हुसी मेघा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद कुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती सत्र मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मेघा सुर मर्दन आद जुगाद गाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते बृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण प्रतिदोधारण दुष्ट निवारण दोख हरे जय जय होसी मेघा सुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खण सर्वर वरखण दुष्ट प्रधर खंड पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मेघा सुर मर्दन आद नाद गाद वृते दुख दुख प्रबच्छण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली तुंत मते अष्टायत चमकण सहस्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुकडुके दमंगे बाक बंगे भुजा फरंगे शुद्ध गति जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान बिहंडन दूज प्रचंडन खंड।

दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब भेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा ग्रंथ कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज।

पोखत है जल मै थल मै पल मै करके नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कौ दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवा।

पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद स्यों किं श्री पद मा पद पाए आद अनंत अगात तवे सो भूत भवेख भवान भय अंत विहीन अनात्मा वादागत होगा छिद्र छह लोकन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मा पद ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह छह है जान को देद अजान को देद जमीन को देद जमान को दह काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पद मा पद लह है रोकंते और सोकंते जल जोगंते वो भात बचावे शत्रु अनेक चलावत घावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाव सम्भूहन भेट न पावे और की बात कहा कह दो सो सो भेट ही के बड़ बीच बचावे जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब है सिरन्यावे पाय सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो बिलगायो वेद गतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमावत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो दे को मन में जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब है बजहारे वेद न पाए सके और न भेद वो खेद है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद वेग अद्वेग जपे उतन ही कुल तारे तीर्थ कोट किए स्नान दिए गोदान महाव्रत धारे देश फिर कर वेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग हरे मोहन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कपित अत्र के चलैया चित्त छत्र के थलैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रन के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया वसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हो के मान है ज्ञान हो के ज्ञात महाबुद्ध ताके दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर देजी गुण गावे तेरे नाम है जोग जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी मारे कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मर टामंगेरे तेरी मान सो तपस कर दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिर अंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहले मांग देश के मंगेरे वीर बंग से बुदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने आवे ते बते दे आए दुख देव के दलत है जिने दोहे दायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सिंह फलत है देव देव तान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचा तता है चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते व्यास ब्रवीन किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाई है न पार पे अपार के बखानी है अद्व अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी क्या के मानी है जंत्र हूँ न जात जाकी बाप हूँ न माए ताकी पूरन प्रभा की सो छटा के अन्न मानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र क्या के जानी है तेज हूँ को तार है का राजसी को सार है का शुद्धता को घर है का सिद्धता की सार है कामना की खान है का साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उतार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है
सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रुद्ध को अभूत है, के अजय अविनाशी है, काम को कुनिंदा है, के खूबी को दिहंदा है, के नीमन करिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल होंगे काल है, के शत्रुन के साल है, के मित्रन को भोगत है, के वृद्धता की बासी है, जो गुहों को जंत्र है, के तेज हों को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, निजंत के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को बास है, के बुद्ध हों को घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, देवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, मान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है नर है, विश्व को वरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार परावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय का वह बसी हल पिथ पूर्वी न पार पा

कटैया जम जाल के देवन के देव महादेवों के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया धर्म छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसे छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल के कूल के हंसनी से सिंहारोम हीरा सी हुसना बैद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सूरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हला बनेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगदार बकान सी बुलंदवाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गायत है भखरी कंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के हरि तेरो नाम जाइयत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र दे अता बिनाथ की

नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथ तुम मोय करो सहाय तो पंगी छंद श्री काल की उस्तत खग खंड

0: वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी।
1: वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी।

दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। वाकई जन्म मरण कटिया जाता है श्रद्धा भावना दे नाल के दर्शन ते गुरु दे करिए। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के दर्शन जिन्हें जिन्हें भी श्रद्धा भावना दे नाल कीते ओ तारी गया, ते जिन्हें जिन्हें उन्होंने घर दे विच रह करके सेवा की उन्होंने पास रह अज उन्हां दीआं कुलां भी आनंद दे विच ने ते पातशाह जी दे नाल जुड़ियां होईआं आप जी दे दर्शन कर सकते जे। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी दे नाल बहादुर बाबा विधि चंद जी रहे अज उन्हां दी संप्रदाय अज उन्हां दे नाम दे उत्ते गड्डी चढ़दी कला दे नाल सेवावां चल रहीआं जिथे किते उन्हां दीआं छौणियां जिथे किते उन्हां दीआं फौजां मिलदीआं ने पातशाह जी की कृपा महाराज जी दे नाल जिन्हां जिन्हां भी रह करके सेवा ने बाई उन्हां दी चढ़दी कला होई अते अगाम ही चढ़दी कला सतगुरु जी कृपा करन सदा चढ़दी कला ही रहे। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी का प्रकाश होण दे नाल जगत रोशन आ गया क्योंकि वखरा एक संदेश गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने पंथ नूं बख्शिश कीता। हुण समा आया इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी का प्रकाश गुरु की बड़ाली विखे हो चुका है। हुण समा आया बड़े जतन किए गए भी इस लाल नूं खत्म कर दिता जाए। कई बार जतन कर करने बड़े ज्यादा जतन किए गए पृथ्वी चंद के वलों होरना के वलों पर सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी चढ़दी कला दे विच रहे। हुण समा आया गुरु अर्जन देव पातशाह जी शहादत का जाम प्राप्त कर जाते हैं। पहले ही पातशाह जी ने गुरु के कोठे विच भजन किए सन। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्यारे सिखा पास बुलाया भी अगली जिम्मेवारी ये बाल सामभ सकेगा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने भजन किए पातशाह जी तुहाडा अंश है तो जरूर सामभेगा तो वक्री नुहार पंथ नूं बख्शिश करेगा। फिर गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब के भाई गुरदास जी के पासों एक थड़ा बनवाया। थड़ा बनवा करके उथे पातशाह जी फिर आप सजे ते उथे पातशाह जी ने दो तलवारां धारण कीतियां मीरी ते पीरी दी। जिथे सिख दे वास्ते भगती जरूरी है उथे धर्म दी राखी दे वास्ते शक्ति भी बड़ी जरूरी है ताकत भी बड़ी जरूरी है। पातशाह जी ने आख्या जेकर अपने धर्म दी राखी करनी है फिर उथे शस्त्र चुक लवो। किसी गरीब दे उत्ते किसे मातर दे उत्ते जुल्म हो रहा ते उस वेले जबर नूं नत्थ पाउण दे वास्ते तलवार चुक लवो। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी ने वड्डी बख्शिश सिखां दे उत्ते कीती। इह गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी दे प्रकाश दा प्रसंग आप जी दे नाल सांझा कीता है। आओ जिहड़े दो हुकम हुण संगतां दे वल्लों आए ने साडे प्यार वाली फौज बेनती ही प्यार सतकार आप सारी सिख संगत बख्श रहे हो। दखनी सिख संगत दखनी सिंह बड़े प्यार सत्कार दे नाल ओ हाजरी भी भर रहे ने। आओ मैं बहुता लंमेरा समा नहीं लैना गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी की सिफत दे विच के तन मीरी पीरी वाले सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह सतगुरु जी तुसी सिखां दे अंदर वक्री नुहार बख्श दिती है। आओ छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी की सिफत नूं दर्शाउंदी हुई रचना मीरी पीरी वाले पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी की सिफत दे अंदर कबीशर जथा इंज बिनेगा।

संगत प्यार दे विच आओ ते आखो तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी महाराज नाल ही सारी सही संगत प्यार दा सबूत देंदे होए आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु जी कृपा करन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन जिन्ना जिन्ना भी कीते ओ तरे जिन्ना जिन्ना सेवा कीती ओह भी तरे ते किते गुरु घर दे विच सेवा करदिआं भुल हो गई पातशाह जी ने बख्श भी दिता। भाई गुरदास जी नूं एक बार पौड़ी पढ़दिआं हंकार आया पातशाह जी ने उन्हां नूं भी फिर बख्श दिता। बेनती कृपा गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी ने कीती। आओ समां पिछे थोड़ा जिहा ही रह गया है ते जिहड़ी जिहड़े हुक्म मैनूं फौजां दे वल्लों होए ने ओह रचना आप जी दे नाल हुण सांझियां करनियां ने। दो रचना ने, एक हुक्म होया है नीले दिया शाह असवारा तेरी करनी तों बिहार ते दूजी रचना जिस रचना नूं संगत ने बेअंत प्यार सतकार बख्शिश कीता है करके मेर मेरां दे साईयां अपना जस करवा लैना खिड़े आनंद लहर विच रहीए चंदरी चिंत सतावे। ये दो रचना कह करके असीं खिमां दे जाजक हो जाणा है। आओ पहलां गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी दी सिफत दे विच आप जी दे नाल रचना सांझी करनी है। आप जी दर्शन कर रहे हो दुनिया दे उत्ते बथेरे वीर बथेरे पैगंबर होए पर गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी दा सानी कोई भी नहीं हो सकिया क्योंकि कवि लिखता दानी बड़े ने जगते दान करते दसम पातशाह जा दानी कोई तकिया ना पिता तोर के ग्यारां दे धर्म बदले रुलदी किसे दी पत नूं टकिया ना बई बड़े राहां दे विच तूफान आए राही मंजल ते पहुंचदा थकिया ना चारे पुत ही देश तों वार दित्ते कोले एक भी निशानी नूं रखिया ना। धन ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी अपना सब कुछ वार के कहिंदे पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाउ कनेरा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह सतगुरु जी महाराज जी की सिफत वैसे तो मैं पहला वजन किया उन्हां दी सिफत हो ही नहीं सकती पर कवि ने कोशिश की कि नीले दिया शाह असवारा तेरी करनी तों बलिहार कदे ते तिखियां सूलां दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी आनंद नाल सुते पए किते गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी नूं दाई थवकदी थक जांदी पातशाह जी उत्थे आराम नहीं करदे पर धन कलगीधर पातशाह महाराज अपने चारे लाडले पुत पुत वार करके ताई भी कहिंदे अकाल पुरख वाहिगुरु ने जिवें जिवें हुक्म लगाया सी उवें उवें हुक्म नूं पगाया है। आओ गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी दी सिफता कलगी वाले ने अमृत दी दात बख्शी बई खेडां खेडियां खालसे निहारियां ने कदे साडियां सिरां ते मुल पै गए कदे चलियां सिरां ते आरियां ने शेरां वांगू हौसले बुलंद रखे साडे अगे हकूमतां हारियां ने गल्लां नाल नहीं साहिब सिंघां माण मिलिया सिर दे के लईआं सरदारियां ने। ये सरदारियां धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह महाराज जी की बदौलत है। आओ करिए जी उन्हां दी सिफता नीले दिया शाह असवारा तरीक करनी तों बलिहारे ढाव सरियां दा कवीशर जथा इंज बिने करदा